तो साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो इस लाइव प्रोग्राम में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और ये हमारा 708 एपिसोड है ऑन प्लेन से मीडिया, जो पहले प्लेन से FM 96.9 के नाम पे जाना जाता था एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन 96.9 फ्रीक्वेंसी। अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हो तो आपको भी हम स्वागत करते हैं इस अपने इस प्रोग्राम में। जी हाँ, हमेशा की तरह जिसे हम आते हैं हमारे पास कुछ खास समाचार रहता है, स्पेशली जो कुछ हो रहा है क्राइसिस में वो सब इवेंट्स के विषय में भी हम आप से शेयर करते रहते हैं, और कुछ संगीत भी हमारे पास होता है जो आपसे हम शेयर करते चलते हैं। और आज अगर क्रैशेज के ओर देखते हैं तो इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड एटमॉस्फेयर। कुछ गर्मी भी थी दिन में, द टेम्परेचर वेंट अ बिट मे बी अप टू 15 डिग्रीज एंड देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है एंड ऐसा अनुमान है कि रात्रि को ठंडी रहेगा। जी हाँ, अभी तो विंटर से गुजर रहे तो इट इज़ अ बिट चेंजिंग, और आई नो बीमारी भी काफ़ी चल रही है एंड सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चाय पीजिए गर्मी गर्मा गर्मा और हमारा प्रोग्राम का मजा लीजिए। जी हाँ, और अब आपको ये भी बता दें कि कुछ प्रोग्राम्स भी हो रहा है क्राइसिस में, स्पेशली अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। आज ग्रैंड कीर्तन संध्या है जो टेम्पलटन हॉल में होने जा रहा है, सो इफ यू वांट टू गो देयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 PM और काफी रात्रि तक चलेगा। तो अगर आप जो फिजी कीर्तन का मजा लेने जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जो कलाकार है निमित सिंह, जो अपना लोकल कलाकार है, और साथ साथ में रानी मुदलियार जो ओकलैंड के निवासी है, वो उनका जो आप कीर्तन वगैरह सुन सकोगे तो ज़रूर जाइए। इट इज़ हैपनिंग एट टेम्पलटन हॉल और उसका जो टिकट एंट्री है $15, 100 पैसे आप साथ में ज़रूर ले जाए, तो यू कैन गो देयर एज वेल। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कुछ गीत सुनाने के लिए, बट हमेशा वही होता है कि हमारे पास जब गेस्ट होते तो शायद कुछ संगीत कम हो जाती है, तो हमारे पास गेस्ट जो जुड़ रहे हैं और इस गीत जो पहला गीत हम सुनाने जा रहे हैं उसके बाद में हम उनसे बातचीत करते चलेंगे। और आज हमारा जो विषय है बांसुरी ए टेल ऑफ लव, आपने सोशल मीडिया में तो

काफी बार इसका जो प्रमोशन पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे इसकी जो पूरी जो जानकारी है हम आज आप तक पहुंचाएंगे तो हमारे साथ जो गेस्ट है पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम उन्हें भी ऑन एयर लाएंगे ताकि हम उनसे बात कर सके तो हमारे साथ जुड़ चुकी है मोनिका जी मोनिका सूद जिसे कशिश के आई थिंक सभी लोग अभी तक तो जान चुके होंगे जो काफी पॉपुलर है साथ साथ विष्णु जी है जिसका हम काफी सालों से देखते हैं और अच्छे जान पहचान है और साथ साथ में हम संगीता जी से भी बात करते चलेंगे सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Bansuri Idol of Love and obviously जो इसके पीछे है कथाकार NZ यानी कि चारू जी जो काफी परिश्रम करती है she couldn't be here today but किसी और समय हम उनसे भी बात करने की जरूर कोशिश करेंगे और जो पूरी समाचार है आप तक लाएंगे तो चलो हम आगे बढ़ते हैं जैसे हमने बोला हम एक आपके लिए सॉन्ग पेश करेंगे उसके बाद में जो लोग हमें हमेशा फेसबुक लाइव द्वारा देखते हैं तो आप फिर हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकोगे ताकि हम ये जो हमारा इंटरव्यू है लाइव आप देख सकोगे और साथ साथ में जो लोग सुखा में दिलचस्पी रखते हैं तो आई नो शायद आप हैप्पी होंगे शायद सेड होंगे बट देखते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप कौन जीतता है और चलो हम आगे बढ़ते हैं अपना ये सॉन्ग प्ले करते हैं उसके बाद में वी आर गोइंग टू गो डायरेक्ट विथ आवर इंटरव्यू विथ मोनिका विष्णु एंड संगीता

0: चाहे ठाकुर की शादी हो या गब्बर की, चाहे कुछ भी ओकेजन हो, बाल तो कटाना है, हैंडसम तो दिखना है, तो सिर्फ एक नाम याद रहे अपुन का चॉइस, नीर बाबा। बोले तो एनजेड फ्लेम्स बाबा, 190 वेरेकी रोड, प्रिनवा स्टेज। नो अपॉइंटमेंट्स नेसेसरी। नीर बाबा इज एन एक्सपर्ट इन रेगुलर हेयर कट्स, फ्लैट टॉप, रेजर शेव, स्किन फाइट, सीजर कट्स, रेजर कट्स, चिल्ड्रन कट्स एंड बियर्ड ट्रिमिंग। उसका नंबर है 0271-127-3687 या तो फिर 0397431-71। सुअर के बच्चों, नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा।
1: जी हाँ, नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा। अगर बाल कटाना जरूर चाहिए मेरे की रूट हमारे दोस्त नीर जी के पास। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं सभी को, और खास करके जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ रहे हैं उनको भी स्वागत करते हैं अपना 708 एपिसोड में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था, हमारे साथ जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं विष्णु जी है, और मोनिका जी और संगीता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम बात करने, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस विषय में बात करेंगे वो है बांसुरी A Tale of Love, and mostly we'll be talking in English so that Sangeeta can cope up and we can be all together. Otherwise, she might start losing us after a while. So it's quite exciting. ये जो event है, हम इसके विषय में काफी बार सुने हैं और social media में तो आपने देखा होगा, and it's quite कहेंगे नाइस हम बोलेंगे, बिकॉज इट इज अबाउट कृष्णा। और आपको तो पता है कि कृष्णा की जब कहानी हम सुनते हैं देन वी कैन गेट सो इन्वॉल्व्ड, और काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी जो लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी में थे, उसने जो गीत भी सुना था, राधा कैसे ना जले आनो, ये काफ़ी पॉपुलर गाना था और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था, जिस तरह से ये जो मूवी लगान में पिक्चराइज किया गया था। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आपको जाना है जो कीर्तन नाइट हो रहा है टेम्पलटन हॉल में, आप जा सकते हो वहाँ भी। इफ यू हैवन बोर्ड द टिकट यू कैन, जो डोवा टिकट अवेलेबल रहेगा, ग्रैंड कीर्तन संध्या, वहाँ पर जा सकते हो। और इस प्रोग्राम के आखिर में हम एक इंटरव्यू भी हमने किया था अभी हाल ही में अपने जो KYC सेगमेंट यानी कि नो योर कैंडिडेट जॉर्ज हैम्पटन, जिसे वो भी हम प्ले करेंगे। तो चलो हम इंटरव्यू जो शुरू करते हैं। एंड वंस अगेन वेलकम मोनिका जी, संगीता एंड विष्णु। And so we will start with our normal usual questions. So we will start with Sangeeta, because I think you've been here for the first time.
2: Yes, I'm here for the first time.
1: Oh, I see. So what have you been up to today?
2: Today, a lot.
1: Okay.
2: Yeah, it was a nice, pleasant day. So we did go out, and we have this coming up, and I also helped my friend move out.
1: Okay.
2: So that's a lot of hard work today.
1: Yes, you're picking in. Yeah.
2: Yeah, and then I came straight here.
1: I see. And where are you originally from?

0: hang up team, who's one of the best lights and sounds provider in Christchurch. So what we are trying to say is that the Black Box Theatre, as I've mentioned, is one of the best theatre out there, amphitheatre out there. We are engaging the best in the town to get you the best experience. As I was mentioning earlier, the costumes are sourced from pretty much all over India, from Vrindavan to Calcutta to Delhi to Gujarat to South India. So Charu has made sure that the quality is never compromised. We are bringing the best. I also need to mention from our admin team, Prachi Ji and Rakesh has been amazing looking after the props and things that have to be brought in. And the rehearsals of 55 people weekend after weekend, it's not a small task. So that is also managed. And what we're seeing is that, you know, the bhakti of Krishna's, Sangeeta has rightly mentioned, that's driving us, that's bringing us the energy. And we get emotional when we enact because of the strength of the story. And it's not only of Radha and Krishna. We are going through some episodes in Krishna's life where he has to fight the adharmas. And so that's a bit of a message as well there. So what I would say is one of a great experiences that we are showcasing for the art patrons in Christchurch.
1: Yep. And before we go any further, so I know by now people would be keen and they'll be wanting to know where they can get their tickets from.
0: Absolutely. Tickets are available via Kathaka New Zealand social media and also by Dry Tickets. It's available now. Again, two shows there on September 12th, yeah. 2 o'clock and 6:30. Six o'clock.
1: Yep. So there you go. If you want to buy tickets, as Vishnu has said, and what we will do is we'll try to put the link in this particular video in the comments section so that you know where you can grab your tickets from. And the date is in September, so not far away, and you can always kind of forget. So do reserve your tickets, and this could be like a lifetime opportunity because we are in Christchurch. We don't really see these things happening often. And once they have done this production, you have to wait for many, many months before they can actually think of another one.
0: Absolutely.
1: So, getting everything together, as Vishnu is mentioning, it's quite a high tech. And Hang Up, they have been here for many, many years because I think I used them way back, maybe 10 or 11 years ago. So I know they are around for many years in Christchurch. Monica ji, when we talk about this program, इतना तो पता चल चुका है दैट इट इज अबाउट कृष्णा एंड राधा एंड इट्स कमिंग टू बी अ लव स्टोरी सो ये कुछ और इसके विषय में आप बताना चाहोगे
2: मैं बिफोर लाइक वी फिनिश दिस मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि दिस इज अ वेरी यूनिक कोलैबोरेशन बिटवीन अ डांस स्कूल एंड अ थिएटर ग्रुप सो द क्रिएटिव टीम दैट इज बिहाइंड दिस ऑफ कोर्स विष्णु जी ही इज गिविंग अस हाउ टू प्रेजेंट इट वी हैव चारू जो हमें डांस के हाउ टू एक्सप्रेस थ्रू डांस जो हमें सिखा रहे हैं देन वी हैव एज यू मेंशन वी हैव सनोज ब्यूटिफुल ट्रैक दैट ही हैज क्रिएटेड कथाकार्स टीम सप्सरा हु आर बिहाइंड द सीन्स वर्किंग ऑल डे लॉन्ग लाइक यू नो एंड देन वी एज विष्णु जी मेंशन प्राची जी एंड राकेश जी एडमिन सो दिस इज कमिंग अप एज अ वेरी यूनिक थिंग आपने इससे पहले ऐसा क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर्टिस्ट का नहीं देखा होगा जहां एक डांस स्कूल और एक थिएटर मिलकर एक ऐसी चीज सामने ला रहा है एक अपना एक एक्सप्रेशन है देखिए जैसे संगीता ने बोला कि राधा कृष्ण की स्टोरी सबको ही जानते हैं पर उसको एक बहुत ही सुंदर तरीके से म्यूजिक डांस एक्सप्रेशन हाव भाव के साथ कैसे स्टेज पर प्रेजेंट करना है वो ये आपको बांसुरी में देखने को मिलेगा और मैं आपके सभी श्रोताओं से जो सुन रहे हैं जो देख रहे हैं उन सबको यही बोलूंगी कि आप कुछ अलग देखना चाहते हैं अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस शो को बिल्कुल मत मिस करिएगा जरूर आइएगा और दो मिनट मैं लूंगी इससे पहले कि मैं फिनिश करूं सॉरी क्योंकि हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं हमारे सारे स्पॉन्सर्स के लिए हमें बहुत कम्युनिटी सपोर्ट मिला है और लोकल बिजनेसेस आगे आए हैं हमको सपोर्ट करने के लिए कुछ के नाम संगीता ने आपको बता दिए थे कुछ के नाम मैं ऐड कर देती हूँ हमारे पास ग्लोलेन ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स है ए टू जेड अकाउंटिंग लिमिटेड रुकमणी सिल्क्स वाईमा ग्रोसरी स्टोर बैडी स्पेस ब्लॉसम डेंटल सेवियोर कैफे ये सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स में आरोहा इवेंट्स प्रिंट प्रो जिफ एंजॉय फोटोग्राफी ध्रुमिल देसाई फोटोग्राफी एंड फिल्म्स और मिस नहीं कर सकते हम अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स को सबसे पहले जलसा विजी रेडियो थैंक यू सो मच हमारे साथ ग्रो विद अमित है इंडियन न्यूज लिंक नमस्ते भारत टीवी टाइम्स एंड रेडियो सादेवाला और जो हमें इस ब्यूटिफुल जो उसको डेकोरेट करेंगे वो है हमारे फैन